अपनी शक्ति नाल ओ जेड़े लोटे विच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने भगतियां गई भगत भले, भगतियां गई भगत भोले। जिस वेले भगतियां ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया, ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतियां नू ओ भगत पौनी भुल गई, ना उताल रहा ना उराग रहा।

खादी खुण सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वह झगड़े ते उतर आंदा है। और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना, जरा प्यार नाल सुनना। कहंदे ने खादी खून सुज

पता लगा के वड्डा पीर आया, एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी। ते उन्हां ने अपने एक सेवक नूं अपने चेले नूं एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया, जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इत्थे तेरी लोड़ ही नहीं, इत्थे अगे पीरां नाल भरिया पिया तेरी की लोड़।

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नू कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जाता है औगणे आरा मनुख पशु है गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है औगणा दे वस पै के बंदा थले गिर जाता है अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता है अवगुण मनुख दे गुणा नू कटदे ने दी हस्ती नू कटदे ते सतगुरु अवगुणा नू कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है ऐसा जीवन बख्शिया है जेड़ा मौत तो ऊपर है और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी पहला मरण कबूल जीवन की छड आस औगण मर जांदे नकारा मनुख मर जांदा एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा गुणा दा जन्म हुंदा दैवी गुणा नू लै के मनुख उपर नू उठदा गुरु नू प्यारा लगदा गुरु नू पाउंदा है संसार नू चंगा लगदा और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी तेरे चरनी लगन तो पहला साडी की अवस्था सी हम रुते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए सरदार हो गए मान वाले हो गए रुलदे फिरदे कीड़े सत्कार योग हो और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे जिंदगी विचों संताप निकल गए चैन आ गए सुख आ गया जीवन विच कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता परोपकारी बना दिता और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्हें योग कीता अमृत दियां दातां दे के नाम दियां दातां दे के बाणी दी सौगात बख्श के जीवन दा सुचज बख्शिया साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हों सदा घुमाया मैं वारने जावा सतगुरु तो तिस गुर को हों खनिए मैं टोटे टोटे हो जावा बलिहारने जावा उस तो जिन मद सूदन हर नाम सुनाया जिसने वाहिगुरु दा नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया तिस गुर को हों वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने तिस सतगुर को वड पुन है ओदा कोट आन कोट धनवाद ओने बड़ा पुन कीता मेरे ते जिन अवगुण कट गुणी समझाया सदा उस सतगुरु नू चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है ओदा परउपकार साडे सिर ते ओदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बसाने साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के अपने प्यार दी निशानी ला के अपना बना के अपना रूप दिता है अपना सुचज बख्शिया है अपना प्यार बख्शिया है
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ।

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया, ते मैल नाल पारा भी हो गया। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, काला होआ स्याओ फिर तरेगा किवें, मैल नाल ते पारा हो गया।

जे तरना है भव जल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे ओ भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है ओ ही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जद मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा सच तेरी जेगा ओ सच दा उपाशक सच वंडन वाला सच दा प्रचार करन वाला नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने चढ़िया सोधन धरत लुकाई भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक कहन लगे मरदाने आ चल तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा है लेकिन ओदे मन विच भाई मैं धर्म दा कम पिया करना मैं सच्चे नू रिझा लवांगा ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावां

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चल दे बनने। पर भोजन ता कर लो ना, आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे कर देने, जथा शक्त सेवा भी करदा। ए आज नहीं, ए रोज ही ऐसा चलदा है। सतगुरु कहन लगे भाई फिर ता तेनु कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करदे हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करदे हो, कदे अपने वल वेंदा है, कदे बाबे वल वेंदा है।

चोर की हामा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए हैं। बाबा जी खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कह लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने हैं।

एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, पर चोरी नहीं मैं छड़ सकदा। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा।

गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकता।

मन विच ख्याल आ गया भाई चलो राजे नू चल के लुटने आ, वो केड़ा गरीब है, शाही पोशाक पहन ली, घोड़े ते चढ़ बैठा ते रात राजे दे महलां नू तुर पिया। रस्ते च सिपाही ने रोकिया, भाई तू कौन है, इस वेले किथे जा रहे है? ते बाबे दा बचन चेते आ गया, पे सच बोली, मैं पूछिया तू कौन है, कहंदा तेनू नहीं दिस रहा मैं कौन, मैनू नहीं दिस रहा तू कौन है, मैं चोर हां। हुण पहरेदार सोचण लगा, भी चोर भी कदे कहंदा मैं चोर हां, ए राजे दा कोई खास निकट वर्ती होना, ते जे मैं रोक लिया तो सवेरे होर ना कोई बिपता खड़ी हो जाए, जा भाई नंग जा, जा अंदर वड़िया, दीवे बुझा दिते, हीरे जवाहरात पुखराज नीलम सोना चांदी पांड बन ली, बंदे दा मन बड़ा लालची, होर बेंदा पर कुछ होर मिल जाए, हनेरा सी, हाथ मार दें मार दें, टोंदे हैं टोंदे हैं, किसे गिल्ली जी चीज नू लगा, ते वो जबान ना लाया ते ओदे विच लून सी, बाबे दा बचन चेते आ गया, पी लून खा के हराम नहीं करना, भाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही है।

सही महीने च बौरा कौन है, दीवाना कौन है, तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार। अगली तो प्यार ना सुनना, साहब कहंदे ने मंदा

वाहेगुरु दा मंत्र बने। सात संगत बोलो श्री। जो कलयुग दे समय वाहेगुरु दा जाप करेगा, ओ चारे जुगां दे मंत्र दा जाप दा फल

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तेनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

बुद्ध सो दीपक जूं जियारे, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। शत्रुघ्न ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ ले, ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कढ़ दे, ताके तेरे हिरदे च टिक जावे सतनाम श्री वाहे गुरु।

पावन पवित्र शब्द कबीर जी महाराज दी पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी ने जो कुछ उन्हां नाल समाज ने कीता, वड्डियां लोगां ने कीता, ओदा जिक्र कर रहे हैं। कहंदे ने कि बंदगी करदा हां, ओदी महान कृपा नाल सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, पर लोकां नूं बर्दाश्त नहीं हुंदा। लोग समझते ने एक नीवी जात का होके लोग इन मथे टेकते ने, हैं ये क्यों? बंदे का सुभा है, बंदा किसी की वड्याई वेख के बर्दाश्त नहीं करता, किसी की प्रभुता वेख के बर्दाश्त नहीं करता। कबीर जी नू ए सजा दिती गई कि इनू पैरां नू बेड़ियां, हथां नू हथकड़ियां पाके गंगा विच सुट दिता जावे। बहुत गहरी बड़ी पवित्र गंगा जिदा अमृत वर्गा जल लोग लैके अपने धन भाग समझदे ने, ते बंदगी वाले पुरश नूं गंगा विच सुटन लगे ने। कबीर जी ने साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच जो कुछ उन्हां नाल बीतिया ओदा जिक्र कीता। पर कहंदे हन मेरा मन मजबूत सी, क्यों? मैं उस मालिक दे पावन चरण अपने हिरदे च वसाए ने, जिन्हां ने उस वाहिगुरु ते ओट रखी, जिन्हां ने ओदा आसरा लिया, उन्हां नूं तत्ती वाह नहीं लगदी। ਤਾਂ ਆਓ।

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही, कहंदे ने हाथी तां नमस्कारां पिया करदा, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओही हाथी च बैठा होया। वांकेर दे बसे भगवान, कहंदे ने मैं हैरान हां भई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी कीती, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल कीता, कोई गलत काम ही नहीं कीता, सजा किस गल दी। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले

सिद्ध बुद्ध महापुरुष सारे तर गए नाम नाल लग के इसे तरह अमरीक पवजल तरिया भगत अमरीक भी संसार सागर तू पार हो।

मोह व्रत है, अमरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अमरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सिधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फेरे तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीक कहन लगा सत बचत। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी दा मालक दुर्भाषा ऋषि, चाहिदा ता ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर व्रत तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापद हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता है, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ पानी पी लो। सारियां दी सलाह ते भगत अमरीक ने पानी पी के ते अपना वर्त तोड़िया। इधर वर्त तोड़िया, उधर दुर्भाषा ऋषि आ पहुंचे। भाई गुरदास जी बयान करते ने, चरणों तक पेख, चरणों तक लै पेख, ओ सराप देवन नु ताया। जब दुर्भाषा ने देखा कि इन्हें वर्त तोड़ लिया, तो वह सराप देने वास्ते तैयार हो गया, अखां गुस्से ना लाल हो गई है। कहन लगा, राजन तू मैनु भोजन छकाए बगैर वर्त तोड़े है, मैं तेनो जिंदा नहीं छड़ना, इहदी सजा देवांगा, सराप भी देवांगा। राजे ने कहा, महाराज मेरा कसूर नहीं, देर होने कारण विद्वाना की सलाह ते मैं वर्त तोड़े, पर दुर्भाषा ऋषि ने एक ना सुनी, अपनी एक लिट पुट के वाला दी उन्नू मसल के सुटिया, जिदे विचों एक बड़ी भयानक चड़ेल पैदा हुई, जिदे हाथ विच तलवार है। और दुर्भाषा ऋषि ने हुक्म कीता, उस चड़ेल नू जेड़ी चड़ेल अपनी शक्ति नाल पैदा कीती, चड़ेल नू कहा, ए जड़ा राजा अमरीक है, इन्ने मेरा सत्कार नहीं कीता, इन्ने वर्त तोड़े है मेरे आन तू पहला, इस करके तू इसनू खत्म कर दे।

अपने अमृतमय बचना विच राग आसा विच वर्णन कर दे हे मेरे वाहिगुरु तेरी जो सर्व व्यापक जिथे भी मैं जाना उथे मेनू तू ही तू नजर आना जे मैं कदी मक्के विच जाना ते उथे मेनू तू नजर आना ते जे किसे मंदिर विच जाना उथे भी

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होगी, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ये पहल तूं करनी है। प्यार असां देना है, लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाईए। ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है।

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काऊ सर

वेद व्यास जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लै करके गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे जीवन च चात मारी, गहरे जा करके के गुरुआं दे जीवन कैसे सन, कैसियां कैसियां सेवावां गुरु महाराज ने कीतियां अपने जीवन विच, ते फिर बई संगतां नूं प्रेरणा कीती कि ऐसियां सेवावां करन नाल वधेरे फल मिलदे हन। पाईसा पाई गुरुदास जी, गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह निमाणियां दे मान, नितानियां दे तान, न्योटियां दी ओट, न्यासरियां दे आसरे, उना दे जीवन विच चात मारी ते की देखिया के भाई गुरु अंगद देव जी महाराज दी सेवा कीती, उना नू रोज इशनान करवाया, ते फिर एक दिन ऐसा आया जदों गुरु अंगद देव जी महाराज पासों अनेका फल प्राप्त कीते। साडे देश दे विच गंगा नू पवित्र मनिया जांदा है, सनातन तो सनातन गंगा दी पूजा कीती जांदी है, ते गुरु अमरदास जी अजे गुरु नहीं सन बने, बाबा अमरदास जी सन 72 साल दी उम्र तक अपने जीवन विच हर साल मंडली दे नाल हरिद्वार जाया कर दे सन, ते हरिद्वार जा करके पाठ पूजा करनी, संतां दा संग करना, ते फिर बई गंगा दा इशनान करना, ते गंगा दे इशनान करन दा फल प्राप्त करना। एक दिन ऐसा आया, इशनान कीता, जिथे आसन लगाया सी उथे नाल ही पंडित जी दा आसन सी। पंडित जी बड़े विद्वान, पंडित जी ने देखिया बाबा अमरदास जी दे पैरां दे विच पदम है, ए पदम भगवान कृष्ण महाराज दे पैर दे विच सी, ते पंडित जी ने कहा बाबा जी आप दे पैर दे विच ते पदम है, ते ए पदम आम मनुख दे पैर विच नहीं हुंदा, जिदे पैर विच होवे ओ या ते राजियां दा राजा बनदा है, सुल्तान बनदा है, या फिर संतां दा महान संत बनदा है, जेड़ा सारियां नूं परमात्मा नाल जोड़दा है। सुन के हैरान होए, लगन बड़ी सी परमात्मा दे चरना कमलां दा ध्यान तरन दे। समा होया खान दा, ते पंडित जी ने पूछ लिया बाबा जी आप दे गुरु कौन हन। गुरु तारन नहीं सी कीता, ते जदों इनकार कीता कि मेरा अजे गुरु कोई नहीं, ते पंडित जी ने कहा मैं अपना जन्म प्रिष्ट नहीं करना, मैं आप दे नाल प्रशादा नहीं छक सकता। आपने गुरु धारण नहीं कीता, कहंदे हन निगुरे दा नाओ बुरा। कलेजे दे विच तीर लगा, उदास चित अपने घर वल नू पुजे, रात सारी नींद नहीं आई, ते अमृत वेला होया कि सुनदे हन के नाल दे करों भरा दे करों उना दी नूं राणी जपजी साहिब दा पाठ कर रही है। ज्यों ज्यों पाठ सुनदे बाबा अमरदास जी, त्यों त्यों कलेजे ठंड पैंदी जांदी, मानो अंदर उस परमात्मा दा चानना हुंदा जांदा,
मन टिका विच आ गया। नू राणी कोलों पुछया जा करके, बच्ची ए जो पाठ कर रही है ए किसदा उचारण कीता होया है? अगो जवाब मिलिया, पिता जी ए ते बाबा नानक जो कल युग दे अवतार आए संसार ते उना दी पवित्र बाणी है। उना ने कहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। मानो ज्ञान हुंदा गया। बच्ची दे प्रवचन सुने बाबा अमरदास जी चैन नाल कर नहीं बैठे, उसे वेले जा गुरु अंगद सच्चे पातशाह दे चरना ते मत्था टेकया। अगो गुरु अंगद देव जी महाराज ने प्यार कीता, सत्कार करन लगे ते बाबा अमरदास जी कहन लगे, गुरु महाराज मैं अज कुड़म बन के नहीं आया, मैं जानदा हां कि आप मेरे छोटे भरा दे सदके मेरा सत्कार करना चाहते हो, पर मैं ते अज दास बन के आया हां। अज ते मैं अपनी झोली खैर पवाण आया हां, मेरे ते कृपा करो, मैनू अपना सेवक बना लवो। गुरु अंगद देव जी कहन लगे, आप ते मालक हो, घर दे मालक हो, आए हो ते गुरु नानक दे घर दी सेवा करनी शुरू कर दे। देख दे देख दे बाबा अमरदास जी सारा दिन संगत दी सेवा कर दे, लकड़ा टोन दे, लंगर दे विच प्रशादे पकांदे, संगतां नूं छकांदे ते फिर गुरु महाराज दी भी सेवा कर दे। रात पै जांदी ते सारे सेवक सौ जांदे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ए गागर लैके ब्यास वल चल पैंदे।

करके अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया।

व्यास जी ने चात मारी गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे जीवन विच ते जीवन विच चात मार के देखिया के गुरु रामदास सच्चे पातशाह दी महान सेवा की होई। बैठा सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे अमृत सर विच जोत जगावे। कहंदे ने सोडी पातशाह रामदास जिन्हा नू सतगुरु जानिया ते सतगुरु जान के पूजा कीती, जिन्हा ने फिर इतनी कमाई कीती के मानो उस परमात्मा दे शब्द दी जोत नू अमृतसर हरी मंदर दे विच टिका दिता। भाई जो भी आवे उस जोत दे दर्शन करे। इस कलयुग दे भयानक समय विच गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने हर एक नू जोत दा प्रगटावा कीता। ए हुक्म होया सी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दा के जाओ भाई हुण इत्थे बड़ी सेवा हो गई गोइंदवाल, हुण जा करके दरबार साहब अमृतसर दे विच जा करके नाम भी जपो ते फिर ऐसा मंदिर बनाओ जिदे विच हर कोई धर्म वाला आ सके। हर कोई गरीब होवे चाहे राजा होवे उथे हर एक दा सन्मान हो सके। ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने मानो उथे प्यार नाल प्रेम नाल इतना सिमरन कीता के मानो उस परमात्मा दी जोत नू हरी मंदर दे विच टिका देता। ते पाई साहब पाई गुरुदास जी कहंदे ने जैसे सत मंदर

चेतन मस्ती खाक में माड़ी गोर करे चेतन मस्ती खाक निमाणी गोर करे अजमला शेख फरीदा तक कुंजड़िया अजमला शेख फरीदा तक कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी।

चलने चलना हार बिचारा ले मनो चलने चलना हार बिचारा ले मनो गंडे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठीनो जिमें पूछे आसमान फरीदा केवट किन गए

सकहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया जीड़िया परदेसिया जिस वक्र को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाया तज अभमान लिया मनमोहन राम नाम हृदय में तो लाद खेप।

समझ अचेत चेत मन मेरे, समझ अचेत चेत मन मेरे, कथे संतन अकथ कहानी, लाभ लियो हर हृदय अरादो, सुके आव जानी, जीव तो व्यवहार है जको तू जानो, जीव तो व्यवहार है जको तू जानो, नानक हर गुण गाए ले सब सुख समझ।

रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावी से खुसाए खां सबे उठ जासी।

कुछ वड्डे होए। चार पांच साल दे लगभग आप दी उम्र रोज छोटे छोटे बच्चियां नू नाल लैके ते गंगा दे किनारे खेलने जाउंदे सन। इस गंगा दे घाट ते शिव दत्त पंडित नाम करके एक पंडित तपस्या करिया करदा सी। 70 साल दी जिस दी उम्र श्री रामचंद्र भगवान जी दा उपासक सी। रोज मूर्ति श्री रामचंद्र जी दी अगे रख के प्रसाद अगे रख के अरदास करदा सी, हे भगवान भोग लाओ। और इस शिव दत्त पंडित नु एक बार अपना दर्शन दियो प्रभु। रोज अरदास करे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, हुण मैं बुढ़ा हो चलिया हां, एक बार अपना दर्शन करा दियो। किते ऐसा ना होवे कि तेरे दर्शन कीतियां बगैर ही इस देही विचों प्राण निकल जान। सात सगत बोलो श्री। और फिर मैनू आ तेरे दर्शना वास्ते फिर जन्म लेना पवे, हे मेरे प्रभु एक बार दर्शन कराओ। आज जदों अरदास कर रहे है इस दी अरदास, क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जदों कोई मन नाल प्रेम नाल अरदास करता है ता उस दी अरदास प्रभु दे चरणा विच पहुंच दी। गोविंद राय जी खेडदे हुए आ गए ते पंडित शिव दत्त नु वेख्या के बेनती कर रहे है, प्रभु भोग लाओ प्रसाद अगे रखिया है। लड्डुआं दा थाल भगवान श्री रामचंद्र दी मूर्ति अगे अरदास विच जुड़े है। ताही गोविंद राय जी ने आके थाल विचों एक लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया। पंडित शिव दत्त ने देखिया के कोई बालक है और थाल विचों प्रसाद दा लड्डू चुक के मुंह विच पा ले, ता पंडित शिव दत्त नु बड़ा क्रोध आया। कहन लगा तू कौन है और मेरी पूजा विच विघ्न पा रहे है, जा चला जाई तू, ते फिर कल या दोबारा आके मेरी पूजा विच विघ्न नहीं पाऊंगा। साहब जी चले गए बच्चियां नाल खेडदे हुए गोविंद राय जी अगे। अगले दिन पंडित शिव दत्त फिर जदों पूजा विच जुड़िया और अरदास कीती भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर खेलदे हुए आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा ले। सात सगत बोलो श्री। अज पंडित शिव दत्त बड़े गुस्से विच गोविंद राय जी दे पिछे पिछे दौड़िया पकड़न वास्ते। अगे अगे गोविंद राय जी, पिछे पिछे पंडित शिव दत्त। गोविंद राय जी दौड़दे होए माता गुजरी दी गोद विच जा बैठे। कहन लगे मां जी आ पंडित सानू गुस्सा करदा है। ताई पंडित शिव दत्त भी आ पहुंचिया। कहन लगा ए तुहाडा लाल है? हां मेरा लाल है। पंडित जी हुक्म करो की गल है, माता गुजरी ने पुछया। ता कहन लगे अज 2 दिन तो मेरी भगती विच विघ्न पा रहा, मैं प्रसाद रखदा हां भगवान राम जी दी मूर्ति अगे के प्रभु भोग लाओ ते ए थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लैंदा। ता गोविंद राय जी कहन लगे मां जी असी ता इहदी भगती विच कोई विघन नहीं पाउंदे, ए आप ही रोज कहिंदा है भोग लाओ ते असी जदों प्रसाद चुके भोग लाया ते सानू गुस्से करदा है। सात सगत बोलो श्री। ता पंडित शिव दत्त बड़े क्रोध विच कहन लगा मैं तेनू ता नहीं कहिंदा भोग लाओ, मैं ता अपने इष्ट श्री रामचंद्र जी नू कहिंदा हां भोग लाओ, ते जे कल तू आया और मेरी भगती विच विघन पाया ता फिर मैं तेनू देख लवांगा। उसे नाल बोल के पंडित शिव दत्त चला गया। तीजे दिन मुड़ गंगा दे किनारे जदों आके भगती विच जुड़िया ते थाल प्रसाद दा अगे रखिया ते बेनती कीती कि हे भगवान भोग लाओ। गोविंद राय जी फिर बच्चियां नाल खेडदे आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुके मुंह विच पा लिया। अज पंडित शिव दत्त ने गोविंद राय जी नूं बांह विचों पकड़ लिया, आख्या 2 दिन तो मेरी भगती विच विघन पा रहे, अज नहीं छड़ना। कोल पई सी सोटी, सोटी चुके ज्यो गोविंद राय जी नूं मारन वास्ते चुकी ता गोविंद राय जी ने चट अपना रूप भगवान श्री रामचंद्र जी दा बना लिया। सात सगत बोलो श्री। पंडित शिव दत्त वेख के हैरान रह गया, भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हां दा मैं उपासक इस बालक विचों मैनू

सच्चे पातशाह दे चरण पारस हैं। जे लोहा पारस नाल छुआ देइए तां ओ लोहा नहीं रहिंदा, सोना बन जांदा है। गुरु नानक दे चरण ऐसे पारस हैं, जे इस दे नाल लोहे नूं भी छुआ देइए तां लोहा भी पारस बन जांदा है। साथ संगत बोलो श्री पारस पेट पए से पारस। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती तां उसकी मनोकामना पूरियां हो गईयां। जे गुरु नानक दे दर दी सेवा किसे ने निष्कामता दे नाल कीती तां ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। सत संगत बोलो श्री धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। शामा दा दीवान सजे है ताईये एक प्रेमी आके साहब जी दे चरणा विच एक टका मथा टेकया। गरीब बिचारा जितनी बिचारे दी वित सी आके एक टका जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरणा विच रखया तां साहब जी ने ओ टका लैके अपनी तली ते रख लिया। कोल बैठे सन बाबा श्री चंद गुरु नानक सच्चे पातशाह दे वड्डे सपुत्र। आख्या बेटा श्री चंद दसो साडी तली विच की है। तां बाबा श्री चंद जी कहन लगे पिता जी तुहाडी तली ते एक टका ही तां है। हुणे सिख आया इसने तुहाडे अगे एक टका मत्था टेकिया जो तुसी अपनी मुट्ठी विच रख लिया। अपने छोटे पुत्र लक्ष्मी चंद जी कोलों पुछिया बेटा तू दस साडी तली ते की है। कहन लगे पिता जी एक टका ही तां है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी संगत कोलों पुछिया सात संगत तुसी दसो साडी तली ते की है। सारे ने आख्या गरीब निवाज एक टका ही है। ताईये सेवा करते हुए भाई लहणा जी उत्थे आए का दी पंड सिर तों एक पासे रख के संगत विच जिथे जगह मिलदी सी बैठ गए। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भाई लहणा जी नूं कोल सद्या आख्या लहणिया इथे आ जी गरीब निवाज। लहणिया तू दस बई साडी तली ते की है। सत संगत बोलो श्री भाई लहणा जी दे हथ जुड़ गए बेनती कीती गरीब निवाज मैं कौन हां के दसा के तेरी तली ते की है। नहीं लैणिया दस बई जो वेखे ही ओई दस। तां भाई लहणा जी हाथ जोड़ के कहन लगे गरीब निवाज आप दी तली ते 14 लोकां दी पातशाही है और जे ए मेर परया हाथ तू जिस दे सिर ते रख सच्चे पातशाह दे दर ते जितना कोई वड्डा सिदक दा झोल लैके आएगा उतनियां ही बख्शीशा दी दाता गुरु नानक कोलों लैके जाएगा। सत संगत बोलो श्री इस वास्ते पंजवें पातशाह कह रहे हैं।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लहणे दा भी, क्योंकि पता सी के आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठ दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले ओ सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड गए। सोने दिया मोरां चुक के घरां नू चले गए। साहब जी फिर खोला जागे गए फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए सोने चांदियां दे ढेर लाए हीरे जवरातां दे ढेर लाए आ सारे ही झोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो झोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथो तेरी मर्जी,